अमेरिका ईरान मुहिदे पर आज दस्तखत होंगे, ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजवजा मुहिदे पर आज दस्तखत किए जाएंगे, जिसे उन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त करार दिया।

जी का यही थी आज की न्यूज़पेपर की टॉप स्टोरीज। चलते प्रोग्राम के स्टार्ट में क्या पेट्रियाटिक सॉन्ग की जाने, और ये सॉन्ग है पश्तो मिली नगमा, सो एंजॉय कर लेते हैं। जी का फ्रीदी की वॉइस में है।

सो बिल्कुल चलते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में एक सॉन्ग की जानिब। सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में एक सॉन्ग, पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग, एंजॉय कर लेते हैं ये सॉन्ग।

0: सो गाइस सॉन्ग भी एंजॉय कीजिएगा और साथ साथ आपको ये भी बताते चलूं, अच्छा सॉन्ग है लेकिन थोड़ा सा सैड टाइप का सॉन्ग है। सो गाइस कामयाब इंसान और खुश इंसान में फर्क क्या है, आज इस पे बात करते हैं कि कामयाब इंसान और खुश इंसान में फर्क क्या है।
1: इश्क को कैसे इश्क समझ में।
0: सो गाइस ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जितना गौर किया जाए उतना ही इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका मिलता है। आमतौर पर मौज में कामयाबी और खुशी को एक ही चीज समझ लिया जाता है लेकिन हकीकत में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि हर कामयाब इंसान खुश भी हो और ये भी जरूरी नहीं कि हर खुश इंसान बहुत ज्यादा कामयाब हो। बाज़ औक़ात एक शख्स दुनिया की नजर में बहुत कामयाब होता है लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं होता। जब एक दूसरा शख्स सादा जिंदगी गुजार रहा होता है मगर वो अंदर से मुतमइन और खुश होता है। गाइस मौश में कामयाबी को अक्सर दौलत, शोहरत, बड़े ओहदे, कारोबार, आला तालीम या लोगों की तारीफ से जोड़ा जाता है। जब कोई शख्स इन चीजों को हासिल कर लेता है तो लोग उसे कामयाब कहते हैं। बजाय उसके पास सब कुछ होता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, इज्जत, शोहरत और माली आसूदगी, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद बाज लोग ज़हनी दबाव, बेचैनी, तन्हाई और परेशानी का शिकार होते हैं। सो गाइस इसकी वजह यह है कि कामयाबी इंसान की बैरूनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है लेकिन खुशी का ताल्लुक इंसान की अंदरूनी कैफियत से होता है। गाइस खुश इंसान वो होता है जो अपनी जिंदगी से मुतमइन हो, जो अपने पास मौजूद नेमतों की कदर जानता हो। और इसके अलावा दूसरों से अपनी जिंदगी का मुआवजा न करता हूं। खुशी हमेशा बड़ी कामयाबियों से नहीं मिलती बल्कि अक्सर छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। खानदान के साथ वक्त गुजारना, अच्छे दोस्तों का साथ, सेहत, सुकून, इज्जत और दिल का इत्मीनान, ऐसी चीजें हैं जो इंसान को हकीकी खुशी देती हैं। गाइस कामयाब इंसान अक्सर अपनी मंजिलों के पीछे भागता रहता है। जब एक मकसद हासिल होता है तो दूसरा सामने आ जाता है, वो मुसलसल मजीद हासिल करने की कोशिश में मसरूफ रहता है। इस दौड़ में बाज़ औक़ात वो अपनी सेहत, खानदान, दोस्तों और सुकून को नजरअंदाज कर देता है। इसके बरक्स खुश इंसान सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि सफर से भी लुत्फ उठाता है। वो जानता है कि जिंदगी सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं बल्कि जीने का नाम है।

0: गाइस, कामयाबी का मियार हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के नजदीक कामयाबी दौलत है, किसी के नजदीक इलम, किसी के नजदीक शोहरत और किसी के नजदीक खिदमत हल्क। लेकिन खुशी का ताल्लुक ज्यादातर इंसान के दिल से होता है। अगर दिल मुतमईन हो तो कम वसाइल में भी इंसान खुश रह सकता है, और अगर बेचैन हो, दिल बेचैन हो, तो दुनिया की हर आसाइश भी खुशी नहीं दे सकती।
1: तो मैं जाने वार मांगे चूसे तो मैं
0: गाइस, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बज़ाहिर कामयाब है लेकिन हर वक्त परेशान रहते हैं। इसी तरह ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आम सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर उनके चेहरे पर इत्मीनान और मुस्कुराहट होती है। इससे मालूम होता है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती और न ही सिर्फ कामयाबी के जरिए हासिल की जा सकती है। सो गाइस, असल बात यह है कि कामयाबी और खुशी का एक दूसरे से ताल्लुक जरूर है, लेकिन ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। बेहतरीन जिंदगी वो है जिसमें इंसान कामयाबी हो और खुश भी। वो अपने मकासद हासिल करे, मेहनत करे, तरक्की करे, लेकिन साथ ही अपने रिश्तों, सेहत, अखलाक और सुकून को भी अहमियत दे। अगर कामयाबी इंसान को खुशी, शुक्रगुजारी और इत्मीनान ना दे तो वो अधूरी रह जाती है।

चले टाइम भी कम है, ये थी मौसम की सूरत हाल। आपके मैसेज मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा, आज प्रोग्राम 9 बजे तक है। आपके मैसेज शामिल करने से पहले चलते एक और सॉन्ग की जानिब, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और सॉन्ग।

सो एंजॉय कीजिए सॉन्ग, वापस जल्दी आते हैं सॉन्ग के बाद. अच्छा जी, मैंने प्रोग्राम में ये सवाल पूछा है कि वो क्या है जिसको सब दो कहते हैं और गाते भी हैं. सो इस सॉन्ग के बाद बहुत जल्दी आते हैं, कह जाएगा मत हमारे साथ रहिए.

और जी इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो में दुख राइजा आयशा तारा सोनिया सोमो फरिश्ता मनत रोमी चाज लाल मिस रोशनी असमसीब आपको एंड सब फ्रेंड को सलाम। अरे सुपरमैन तबीयत खराब होने के बारे में अच्छा जी चले थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया। और जी ग्रेट मलिक ने मैसेज क्या है एवरीवन अच्छा जी चले थैंक यू और जी नेक्स्ट इट्स मी तरहान अगेन ये शिकायत नहीं तजुर्बा है कदर करने वालों की कोई कदर नहीं करता सलाम तो रुशीहान आईना हफ्सा सोनिया हान मारियरमान आयजा जलाल जोहा मनता आयशा चुट्टी अक्सा सनम खुरेन गुलशन रोमी मिमसहानी मजरूम खचका और इसके अलावा फरिश्ता मलिक जवेरिया अच्छा पालिश्ती ग्रेट मलिका जारा एंड ऑल फ्रेंड्स चले थैंक यू सो मच तरहान बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया डेरा मनना जी नेक्स्ट मैसेज शाह फैसल फ्रॉम बनगुल गुड मॉर्निंग पखीर रागले सलामोना वालेकुम असलाम थैंक यू शाह फैसल बहुत शुक्रिया आपको भी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच शाह फैसल आपने बनो से ज्वाइन किया अगेन वेलकम टू द शो आई थिंक के जैसा कि किसी से आप कुछ मांगोगे मुझे दो ये खाने की चीज मेरे तो जेन में ये जवाब आता है ग्रेट मलिक ने मैसेज किया है और जवाब दिया है ना ना ना नेवर थैंक यू

नेक्स्ट में डॉक्टर आइजा सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब सर में दर्द है, समझ नहीं आती, थोड़ा सोच लिया, जवाब तो नहीं है, सोख अच्छा तो वो यही चे दर्दिश रोका मतलब दो फिर फिर कहते हैं। अच्छा जी चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लेकिन आपका जवाब है गलत। ना ना ना आने वर आपने भी सॉन्ग की फरमाइश की है, चले मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया डॉक्टर। नेक्स्ट तरहान ने मैसेज किया है फिर से, गुड मॉर्निंग, और सवाल का जवाब है जब हम किसी को कहते हैं कि दो तो हम वो चीज खा लेते हैं। ना ना नेवर। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। रकीब फटक ने मैसेज किया है, रकीब फटक का मलिक सिंह जीना गुड गुड मॉर्निंग तारकेश भाई, चले थैंक यू सो मच।

थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। रकीब पटक ने फिर से मैसेज किया है और कह रहे हैं कि एवरी पर्सन इज वैल्यूएबल एंड वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, हु गिव्स रिस्पेक्ट इन रिटर्न फॉर रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी इन रिटर्न फॉर लाइट। यस एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच रकीब पटक, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।

और रिकी पचर के ऊपर से कह रहे हैं कि वी नेवर थॉट टू स्टे विद द पीपल फॉर आवर ओन बेनिफिट. चले ठीक है, थैंक यू, थैंक यू रिकी पचर, बहुत शुक्रिया. और जी नेक्स्ट मैसेज. अच्छा, अभी तक किसी ने भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया है, पता नहीं क्यों. नेक्स्ट वेलकम तारा चक. और हाँ, आपको आपको किसी ने कहा है कि मैं पालस्ती हूँ. अच्छा. एंड हफ्सा एल्मा, मिस यू मैं ग्रेट मलिका. चलें, थैंक यू ग्रेट मलिका, बहुत शुक्रिया. टाइम कम है, जस्ट 3 मिनट बाकी है. और जी नेक्स्ट, सलाम तारिक भाई, कैसे हो? इन्फॉर्मेशन से बड़ा शो मनाहल ने मैसेज किया है. चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मनाहल, आपने मैसेज किया. वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टिक टॉक फिट फॉर, बिल्कुल सुपर क्लासिक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और आज भी मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन थे, लेकिन आज टाइम कम है. आज प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 9 बजे तक है. चले बहुत शुक्रिया. और टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, जस्ट 2 मिनट बाकी है, आपसे इजाजत लूंगा. आज किसी ने भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया है. चले ये सवाल मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा पूछूंगा. और सवाल ये था कि वो क्या है जिसे सब दो कहते हैं और कहते भी हैं. तो बिल्कुल मेरी तरफ से आप सबके नाम ये सॉन्ग. सवाल का जवाब तो वैसे भी किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरी तरफ से आप सबके नाम

0: सो आप सबका बहुत शुक्रिया जिसने ज्वाइन किया मैसेज के थ्रू, और जिसने ज्वाइन नहीं किया प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ खामोशी से सुना, उनका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आज 5 से 6 बजे तक प्रोग्राम में। बिल्कुल, आप आज से आज दोबारा आपसे मुलाकात होगी 5 से 6 बजे तक प्रोग्राम में।
1: क्यों छोड़ गए तो,
0: तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा
1: मुझे दिल,
0: और एंजॉय कीजिएगा सॉन्ग। इस सॉन्ग के साथ मैं लूंगा आपसे इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।

साठ पचहत्तर सिफर तीन सौ सत्रह सिफर नब्बे साठ पचहत्तर जीरो थ्री वन सेवन जीरो नाइन

0: बिल्कुल जी पमंड मंड मेसेज देव इच्छित आई डी पसंद जमा आई डी आई डी निश्चित जी जो साधा बात आई कि मैं स्टूडेंट है मका ना जो स्टूडेंट आइडिया नहीं भी नहीं वो सर आईफोन मोबाइल भी नहीं वो सर टिकटॉक भी सब वो सर नहीं यानी कि तश्पाणी द फीस पैसे और सर नहीं व्यापक के आइडिया ने मोबाइल कम तरह पर आ लिया ठीक है मका ना यस अजी मोहम्मद जुल्फिकार वही छे नईमुल्ला उमर जई और दमोर प्लार एक यौस भाई सेहत खदे का ना बिल्कुल खदे वही छे व्हाट्सएप मैसेज कोम तासु न गोरे बिल्कुल ए गोरम खा उसे कल व्हाट्सएप मैसेज तलाड छे मौका ले टेक्स्ट मैसेज तलाड छे मा तासु सरे पो पदक नंबर मा ता मैसेज के वली छे और से बे गोरम खदा दिरालम व्हाट्सएप मैसेज न तरफ से दक दि दक दि दक दि दक दि दक दि दक दि वही छे नहीं मल्ला मर्द सिफात शैम्पू इस्तेमाल और व्यक्ति में सर ढेर ज्यादा खैस्त शिविर खा ढेर मन नजी कुर्बान इब्राहिम कुल भाई डेर मन न माता व्हाट्सएप तस्वीर रेडी द सिफात कॉस्मेटिक्स मख खराब है खा अवे द सिफात कॉस्मेटिक्स सिमिनो और सरो का गाना पपट स्तर को बांधे
1: रब से राजी खुदा इनसे राजी
2: रब से राजी खुदा
0: इब्राहिम गुल से बढ़ेरा मनना अल्लाह दे बात साधा और मख खराबे की खा देखो खिजमा तक कम खलक व्हाट्सएप बांधे वॉइस मैसेजेस के नुजो वॉइस मैसेजेस बिल्कुल निशम हो रहे थे खता सुबह कोशिश के वे माता बाप तासो टेक्स मैसेज हम कहे सर वो लिखे व्हाट्सएप मैसेज मैसेज कहे नो तासो लिखल कहे खा जब चीज वॉइस मैसेज दे वक्त नशम हो रहे थे वही चीज माई नेम इज असिफ आसिफ शेर अली मेरा मन न कुर्बान खुशहाल हो से خوش دل خان فرام لکی مروت وی چی دا پاکستان جنڈا دا خوب دا پروگرام اخیر کی پتا لگی قربان خواہ بالکل دا پروگرام اخیر کی پتا لگی دا وقت تاسو اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک و ٹانک یعنی کی امن ریڈیو نیٹورک مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زید دا ون سن آف پیرنٹس اور پروگرام کوم صفات کاسمیٹکس دا پارا اللہ دیو کی تاسو خوخ کے اگر چیز امنگ سمرا اور دن کی دی گا نا

0: से बिल्कुल भी आई कहना चाहिए ना मक्सी बिल्कुल दासी चल वो की कहना बिल्कुल सही छे मैसेजेस व्हाट्सएप से कॉल भी बिल्कुल से मिली जी तो बिल्कुल कॉल होंगे वाले छे 0927291292 बने ठीक है पेडीसील नंबर मैंने बिल्कुल कॉल से मिली जी डेढ़ वर्ष बाद माजीगर शो से मुलाकात दर्ज रखी जी और मे बी बिल्कुल इतवार पर वर्षा द पीर पौरा से नहीं नन इतवोर दई सबूत पीर वर्ष दो न दे वर्ष दे पाइना छे पर बेंचला हर हफ्ते पर तो सरा मुलाकात कीजिए ठीक दे पाइना छह बजे पर नो बिल्कुल कॉल कवली से 0927291292 बने यानी पी डी सेल नंबर बने बिल्कुल कॉल कवली से देने लो मैसेज मैसेज तरीके हाँ दे असोना मोबाइल के वैसे ही राइट या क्रिएट ऑप्शन था चर्ता के तुम मैसेज लिखे ठीक सो चर्ता के मैसेज लिखे और हम सही सर चाहता सेंड करवाई नो आगे से चीज लोड से हेल्थ वो लिखे आर एक अक्सर डेर गिला के बीच मैसेज तो सन देर देमी और मोता रिप्लाई मैसेज हम वापस नरसी देसो जगी देसी नो कल कला स्वीक ना चे द मैसेज जो मेथड दे तरीका दो आगा मतलब तो या मतलब खतोशी यसशी या तो जासे चलो गए छे आर के चिकला हली के नवर के तो स्पेस फेर के नो जे स्पेस फेर के नो तो मैसेज आल के नशिर तले ठीक छ स्पेस हो बिल्कुल नवर के वे घट खरुशो लिखाई आर ए के रेडियो अमन करक ठीक छ नो करह द अवली के बे बगे ना बादो स्पेस पर नो मखपल इलाके नो और सब मैसेज सब पैगाम तो उस प्रेजेंट से भी बिल्कुल आहली कले से ब्या द मैसेज सेंड के वाले से पो 8583 बने यानी 8583 बने अच्छा बल दहा बरोबर से चक्सर डेर द बीच यार मैसेज दरता सेंड की हो दर दरी मीना वजह सदो अच्छा यो हो दा वजह हद बसे छे डेर लेंथी मैसेज हमारे के ठीक छ डेर लेंथी मैसेज की मी आहा दल तक रिसीव कीजी ना मतलब आल तक नरदरी में ठीक छ नो डेर लेंथी मैसेज वे हां नली कई ठीक छ देने रहो बल दा बसे छे तो से चुकम रोमन वर्ड्सी मतलब आम चुकम उर्दू लिखे ठीक छ पाए के हम मैसेज तो लिखे ठीक छ आम चुकम लिखा मतलब इंग्लिश के चुकम मतलब उर्दू भी ठीक छ लाइक फॉर एग्जांपल आम चुकम तो सो लिखे के ना पर टेक्स्ट के खो उर्दू की चुकम उर्दू के भी के ना आम चुकम से उर्दू लिखे के ना लाइक फॉर एग्जांपल मोनोम चुकम ने मोनोम जलिकम ठीक छ नो दे तरीके से ना डबल तरीके से तो चुकम द मैसेज लिखे पर उर्दू से लिखे दावे तो लिखे आम चुकम उर्दू से कला तो मैसेज लिखे नो तो मैसेज दल तक नशिर ले ठीक छ मुझ दा तो कन्फर्म के छे आम उर्दू से तो मैसेज लिखे दगाबल चुकम इंग्लिश के उर्दू भी के ना आगाज तो लिखे आगा मैसेज दल तक डेर लेंथी मैसेज है ना जैसे डेर लेंथी मैसेज वाली के ब्याह दल के नशीत लाए नो डेर लेंथी मैसेज है ना लिखे अक्सर यूनि मतलब लेंथी मैसेज रोशी हो डेर नरदीमी ठीक छ नो मतलब दस बजे कहे छे डेर लेंथी मैसेज है नली कही ब्याह ने बाद मैसेज नशीन की ठीक छ अच्छा नुदासी कवि बिल्कुल टाइम शोवे दे द अजान ब्रेक टाइम बिल्कुल शोवे दे ठीक छ अजान ब्रेक तर तसी अजान ब्रेक न बस बिया उपास रसी और बिल्कुल प्रोग्राम बाद 6 बजे पर रवानी नो बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक था अजान ब्रेक नंबर बी आर दरीमी और तो खिदमत को बिल्कुल हाजिरी जी प्रोग्राम से बिल्कुल खोजे खोजे संदर है आप लिखी जी वैसे देने लवा कॉल वह से मिली जी मैसेज वैसे मिली जी नो बिल्कुल वर्सी द अजान ब्रेक पत्र बने अजान ब्रेक के पास बी आर जी और तो बिल्कुल छर तक नजई तो बिल्कुल रेडी अमन 88.4 करक सर
1: تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ڈیرا مننا

लम्हे सूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

कैसे आना हुआ शो में और कैसे गुजर रहे गर्मी एंजॉय तो कर रहे हो ना। गर्मी को सलाम टू ऑल स्वीट फ्रेंड डेरा मनना वालेकुम सलाम यो जहान बनना। बस माशाल्लाह गोरा का गर्मी भी कहना गरमाई के स्टूडियो माशाल्लाह यह भी और देन अलवाप यखनई की गर्मी यखनई के स्टूडियो जी के मधु कहना गर्म बेटिक डेरा मनना। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हाम खान फ्रॉम डुमेल तारिक सर वेलकम एंड पखेर रोगले एंड शो स्वीट डेरा मनना। अरे हाम खान लो ये खजा शेख मैसेज को बोले ढेर बात।

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।

0: फर्क है हमें एस्मा वॉशिंग पाउडर और खसरी।
1: एस्मा वॉशिंग पाउडर मड़ा मिजरी मोहकोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वॉशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक कीजिए दस रंगे सरा प्रोबरे
0: बिल्कुल तरह खाना दा गिले हुए हर वक्त मुता हाँ कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता एस्मा वॉशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टोल कुर वाला नकवाश होल दी।
1: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब रो वो दर तो ये या चेप एश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
0: तारे कहना एश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना न खर पवी
1: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
0: तारे खाना दाओ तो दफा बने गलशे अंदरून लाकी गेट जान से बे गाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी
2: यू आर लिसनिंग रेडियो अमर नेटवर्क
3: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
2: 88.4 FM

0: आजा, हलवा आता है तो हलवा पे क्या करता है?
1: हलवा ये सब गरम गरम हलवा आते हैं, जिद्दी हलवा आते हैं, हलवा आते हैं, गुड़िया का हलवा आते हैं।
0: अच्छा वो गाना सुनाओ, जुम बराबर जुम।
1: क्यों?
0: वो गाना सुनाओ ना, जुम बराबर जुम बराबर जुम।
1: मुझे प्यार प्यार हुआ अलमिया,
0: बड़ी बरसात में इकरार हुआ अलमिया। मुझे प्यार हुआ प्यार। अच्छा एक और गाना सुनाओ, गजल सुनाओ, गजल। वो गजल सुनाओ, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है?
2: अपने
1: हम तेरे

0: हर झण आवाज रेडियामान आवाज रेडियामान 88.4 नेटवर्क मंगरवळूस तासलपारा दघशान मलमती परव्रमना चितस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस तास सरयो रेडियामान 88.4 करक आवाज तस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन
1: रेडियो अमन कभी नरम कभी गरम म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज रेडियो अमन आपके मन का अमन

दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक कचरतासो पदसे मरस के मुब्तिला याए किपा आगे के बवासीर फेस्टुला यानी खूनी दाना प्रास्टेट द गुर्दे पत्री द त्रिहि पत्री थायराइड ग्लैंड यानी कदुगाड़े रसूले ट्यूमर अर्कुन्निसा और दस्तरगो पर्दे छिपनोरो जायुनों के डॉक्टरानो तास्ता द ऑपरेशन वेलेदी नुतासोराशे दरमान होम्योपैथिक सेंटर था के अल तक डॉक्टर मुस्तफा कमाल आर एच एम पी डी एच एम एस डी आई होम डी एस सी बी एच एम एस द होम्योपैथिक द दुनिया यो तजर्बाकार डॉक्टर बतासो इलाज बगैर द ऑपरेशन द मेडिसन पर जरिया बांधे कई और देना इलावा बेऔलादी मर्दाना कमजोरी जनाना पोशीदा अमराज मैदे अल्सर और द मैदे जुमला अमराज और द शुगर मुकम्मल इलाज ब्लड प्रेशर और दजड़ जुमला अमराज शामिल दी। डॉक्टर मुस्तफा कमाल से पजदीद क्वांडम मैग्नेट एनालाइजर मशीन पजरिया बांधे द टोल बदन मैना कई और द दे सरा बताउस्ता फेजोथेरापी द मशीन पजरिया बिल्कुल काशोराशे और द दरमान होम्योपैथिक सेंटर नखपल इलाज जर तर जरा दरला सके। पतेदा दरमान होम्योपैथिक सेंटर नेज खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर ता बिल्कुल मखामा। मोबाइल नंबर दे 0331 12

0: Τώρα είμαστε με τζι, τάρτο που γεγίζει από τα σαπάρ, σε τέσσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
2: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα είμαι τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλε βε χάρβαστε μουτάχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
2: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की ओ दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर दा कपड़े सा पई पवात लोसीना नखर पवी
2: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অর্ডার তে মেলাবিজি।